0: आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com पता है podcast.airnews@gmail.com
1: FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं मीका और चिन्मय की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है लम्हा।

मीका और चिन्मयी की आवाज़ों में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम था लम्हा। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: Akashvani at 90.
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: नमस्कार साथियों, मैं आपका रेडियो दोस्त रोहित सुथार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो सीधे हमारी सांसों से, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है। दोस्तों, आज है 5 जून, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक अलार्म है जो हमें याद दिलाता है कि अगर ये धरती हरी भरी है तो हमारा कल सुरक्षित है। साथियों, पर्यावरण को बचाने में युवा बड़ा बदलाव ला सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण में हम युवाओं का योगदान सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमारे पास नई सोच है, जोश है और कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है। इसकी शुरुआत हम आसान आदतों से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा। दोस्तों, जब भी हम बाहर जाएं तो प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों की जगह कपड़े के थैले और अपनी पानी की बोतल साथ रख सकते हैं। साथ ही इस पर्यावरण दिवस पर क्यों न हम सब अपने हाथ से कम एक पौधा लगाएं, और सिर्फ लगाएं ही नहीं बल्कि उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी लें। साथियों, पर्यावरण को स्वच्छ रखना कोई एक दिन का काम नहीं, ये हमारी रोज़ की जीवन शैली होनी चाहिए। हमारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर इस धरती को सुंदर बना सकती है। तो आइए, आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर हम सब मिलकर ये प्रण लें कि धरती माँ को स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे।

साथियों, हम अभी आकाशवाणी का 90वां वर्ष मना रहे हैं। इस अवसर पर हम अपने तमाम श्रोताओं के लिए इस कार्यक्रम में एक खास अवसर लेकर आए हैं। अभी तक इस कार्यक्रम को आप सुन रहे थे, लेकिन आज आप इस कार्यक्रम में भागीदारी भी करेंगे। तो आपको करना केवल यह है कि इस कार्यक्रम से संबंधित हमारी आज की सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट बॉक्स में रेडियो के साथ अपनी सेल्फी भेजिए, और साथ ही जो गीत आप अभी सुनना चाहते हैं उस गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना और अपने गाँव या शहर का नाम लिखकर पोस्ट कीजिए। आइए मनाते हैं साथ मिलकर आकाशवाणी के 90 वर्ष। और अब चलते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, श्रीगंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ जी ने हमें सेल्फी भेजी है अपने रेडियो के साथ, और गीत उन्होंने सुनना चाहा है फिल्म निकाह से, दिल की ये आरजू थी कोई दिलरुबा मिले। तो आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

साथ ही अगली सेल्फी भी हमें मिली है जो हमें भेजी है गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा खुशदिल जी ने, और उनके साथ उर्मिला गुड्डू जीनू मनु शिव सेठी और स्माइल सभी ने फरमाइश की है फिल्म महबूबा के गीत पर्वत के पीछे चंबे का गांव गांव में दो प्रेमी। तो आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा गीत।

दोस्तों, सेल्फी विद रेडियो को आप अपनी फरमाइश के गीतों के साथ ईमेल कीजिए हमारे ईमेल के पते पर जो है akashvanichittorgarh@gmail.com। हम आने वाले खास कार्यक्रम में आपकी सेल्फी और आपकी फरमाइशों को हमारे तमाम श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी रगों में जो जोश और हौसला है वो बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी युवा शक्ति को नशे की दीमक खोखला करने लगे तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे। इसलिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य नशे की लत छुड़ाने के साथ साथ हमारे समाज, हमारे स्कूल, कॉलेजों और घरों को इस बुराई से दूर रखना है। इस अभियान का पहला कदम यह है कि हम खुद को हर तरह के नशे से, चाहे वह तंबाकू हो, शराब हो या कोई अन्य नशीला पदार्थ, उससे पूरी तरह दूरी बनाएं। अगर हमारे आसपास या हमारे ग्रुप में कोई दोस्त इस गलत रास्ते पर जा रहा है तो उससे मुंह मोड़ने के बजाय उसे समझाएं। इसके अलावा दोस्तों, नशे का सबसे बड़ा तोड़ है व्यस्त रहना और अपने सपनों के पीछे भागना। खेलकूद, संगीत, कला या अपनी पढ़ाई में मन लगाना। जब आपका मन रचनात्मक कामों में लगेगा तो नशे जैसी बुराई के लिए जीवन में कोई जगह ही नहीं बचेगी। साथियों, नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आइए हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और कहें, नशे को ना, जिंदगी को हाँ।

या आम की लकड़ी को खोखला करके बनाई जाती है। इसे पूरी तरह हाथों और उंगलियों की कलाकारी से बजाया जाता है। आज पश्चिमी संगीत के दौर में जब हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स बज रहे हैं, तब भी हमारी पारंपरिक ढोलक की सादगी और इसकी गूंज का कोई मुकाबला नहीं है। ये हमारी संस्कृति की वो विरासत है जिसे हमें संभाल कर रखना है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, आज हम एक ऐसे वाद्य यंत्र की बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारे देश का कोई भी जश्न, कोई भी त्यौहार अधूरा है, और वो वाद्य यंत्र है ढोलक। दोस्तों, ये सिर्फ लकड़ी और चमड़े से बना एक ढांचा नहीं है, ये हमारे देश की धड़कन है। चाहे गांव की चौपाल पर होने वाले लोकगीत हों या फिर हमारी फिल्मों के सदाबहार गाने, जब तक ढोलक की थाप नहीं पड़ती तब तक पैरों में थिरकन और दिल में जोश नहीं आता। साथियों, ढोलक आमतौर पर शीशम

आइए साथियों, बात करते हैं हाल ही में हुई कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अस्मिता खेलो इंडिया महिला साइकिलिंग सिटी लीग 2026 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है महिलाओं एवं बालिकाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाना। 14वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में फलौदी के लावण्य सिंह पुरोहित ने 75 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने

इसी के साथ साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी रोहित सुथार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप FM मीरा चैनल से प्रसारित युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंट वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी। भावना शर्मा सहायक वन संरक्षक मुख्यालय चित्तौड़गढ़ से बातचीत कर रहे हैं सीताराम महावर।
1: नमस्कार साथियों, इस समय अपने साथ हैं भावना शर्मा जो कि सहायक वन संरक्षक मुख्यालय चित्तौड़गढ़ हैं, और आज इनसे जानकारी लेते हैं पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी विषय पर। भावना जी कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: धन्यवाद सर।
1: भावना जी, सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि हर वर्ष हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और पर्यावरण को लेकर चिंतित होते हैं, क्या हमारी चिंताएं पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी है?
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दूंगी। और आपने सही कहा सर, ये चिंताएं लगातार बढ़ती रहेंगी अगर हम सभी अभी नहीं चेत रहे, क्योंकि केवल एक विभाग पर्यावरण को नहीं बचा सकेगा। पर्यावरण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें सबको लगना पड़ेगा। अब समय आ गया है, लगातार परिस्थितियां बिगड़ रही है।
1: जिम्मेदारी यदि तय करनी हो तो किस किस तरह से हम ये तय करें कि हम लोगों ने मिलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है?
2: देखिए, जो भी परिस्थिति बन रही है, प्राचीन समय में हम जल संरक्षण बहुत आसानी से कर पाते थे। कुएं, बावड़ी, तालाब सब हमेशा काम आते थे, रिचार्ज रहते थे। ये हमारी ही वजह से ऐसा हुआ है कि हमने उनकी अनदेखी शुरू कर दी और आज जल संकट हमारे सामने है। दूसरा, लगातार वैश्विक परिस्थिति हम देख रहे हैं, युद्ध में और इस तरह के विरोधाभास में हम गुजर रहे हैं। लगातार विश्व का तापमान बढ़ रहा है, समुद्री जल लगातार बढ़ रहा है। ये चीजें आगे ना पीछे हमारे क्लाइमेट को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने वाली है।
1: पहले से ज्यादा पेड़ पौधों की कटाइयां होने लगी है, कंस्ट्रक्शन के कारण कई तरह से धूल सामने आई है, हमारा जो जल है वो भी खेती के कारण, उद्योगों के कारण प्रदूषित होने लगा है, जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उसकी किस तरह से हम ये तय कर सकते हैं कि जिम्मेदारी हम सबको निभानी है?
2: देखिए, जिम्मेदारी तो हम सभी की है। अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ जिस तरह से हो रहा है, मान सकते हैं हम कि हमारे को बहुत जरूरत भी है, लेकिन कुछ तो जरूरतों को हमको सीमित करना पड़ेगा। हम बिल्कुल अंधे होकर और डेवलपमेंट की रेस में दौड़ते रहें और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते ही रहें तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम देख रहे हैं हमारे हिमाचल और उत्तराखंड के जिस तरीके से ग्लेशियर्स नीचे आ रहे हैं, जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स की घटनाएं 200, 200, 300, 300 गुना बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं हम लोग

0: जिम्मेदार हैं। डेवलपमेंट अपनी जगह पर है, डेवलपमेंट होना चाहिए, देश की महती आवश्यकता है, लेकिन उसके पर्यावरण या प्रकृति को बलि चढ़ाकर अगर हम वो कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा।
1: हमारा किसान भाई खेती करता है, वह आजकल जैविक खेती की और प्राकृतिक खेती की और आगे बढ़ने लगा है, इससे भी थोड़ा बहुत सहयोग हमारा किसान भाई कर सकता है?
0: बिल्कुल कर सकता है। और मैं किसान भाइयों से जरूर ये कहना चाहूंगी कि जितना हो सके आप ये कृत्रिम खाद कम से कम यूज करें। यूरिया और ये कभी ना कभी हमें बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं, स्वास्थ्य के लिए भी, और जल संरचनाएं सारी प्रदूषित हो रही हैं इससे। तो आप कोशिश यही करें कि हम वापस से अपने पुराने दिन याद करें और जैविक खेती की तरफ आ जाएं। जितना हम जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे, स्वास्थ्य को भी बचाएंगे और पर्यावरण को भी बचाएंगे।
1: भावना जी, उद्योग भी कई तरह के प्रदूषण उत्पन्न करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उन सबकी भी जिम्मेदारी कुछ न कुछ होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कैसे वे प्रदूषक वातावरण में न छोड़े।
0: बिल्कुल, एक तो उद्योगों से जो चिमनी से जो धुआं निकलता है वो भी बहुत विषाक्त होता है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि फिल्टर्स इतने प्रॉपर लगे कि प्रदूषक कम से कम वायुमंडल में जाए, और इस तरह की फैक्ट्रीज जो बहुत विषाक्त प्रदूषक वायुमंडल में छोड़ती है उनको थोड़ा सा शहर से दूरी बना के रखनी चाहिए। यहाँ पर और कहीं और भी जहां जल संकट हो रहा है तो क्या होता है, उद्योगों का जो अपशिष्ट है वो सीधा सीधा जल स्रोतों में मिलाया जा रहा है, उसे रोकना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी डायरेक्ट अगर आप जल स्रोतों में उस अपशिष्ट को मिला रहे हैं तो जल स्रोत हमारे लायक नहीं बचते फिर, और इस चीज को रोकना उद्योगों की जिम्मेदारी है।
1: विकास के लिए खनन आवश्यक हो जाता है, खनन के कारण हमारी मिट्टी प्रभावित होती है, कई बार वन आच्छादित क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं, वहाँ जिम्मेदारी किस तरह से हम निभा सकते हैं, कैसे जिस क्षेत्र में वन कटे हैं हम पुनः लगा सकते हैं?
0: देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारा खनिज की जिम्मेदारी भी बहुत महती आवश्यकता में आ जाती है, तो खनन भी हमारी मजबूरी हो जाती है और आवश्यकता भी है, लेकिन उस खनन के बदले में हम कितना प्लांटेशन उन जगह पे कर दें जो वेस्ट लैंड्स हैं, छूटा हुआ लैंड है, जहां पर फॉरेस्ट नहीं है, उन जगहों को चुने और सामूहिक जिम्मेदारी लेकर हम वहां पर पौधारोपण करके एक तरह से जंगल खड़ा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसका रिप्लेसमेंट तो करना पड़ेगा। अदरवाइज हम मानते हैं कि 33% हमारे पास फॉरेस्ट होना चाहिए, 33% से राजस्थान अभी काफी पीछे है, तो हमें कहीं तो सोचना पड़ेगा।
1: चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो वनों की स्थिति कैसी है?
0: चित्तौड़गढ़ की स्थिति राजस्थान में वैसे दूसरे जितने भी जिले हैं उनसे बेहतर है, हम लगभग 24% के लगभग चलते हैं फॉरेस्ट को लेकर, लेकिन फिर भी चित्तौड़गढ़ भी धीरे धीरे डिक्लाइन ही कर रहा है। तो हरियालो राजस्थान है, और ये अभी जल अभियान चल रहा है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इस तरह के सरकार एफर्ट्स कर रही है। तो पिछले साल भी हमने हरियाणा राजस्थान में 10 से 11 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान में लगाए गए थे, और इस बार का लक्ष्य भी 10 करोड़ पौधों का है प्लांटेशन का। तो सरकार के और हमारे सबके सामूहिक प्रयासों से हम राजस्थान का नक्शा बदल सकते हैं, कोशिश सबको करनी पड़ेगी।
1: भावना जी, अक्सर जब कभी भी पर्यावरण की बात की जाती है, पेड़ पौधे लगाकर हम कार्य आरंभ कर देते हैं, लेकिन जलीय जीव, वनस्पति, वन्य जीव, उनको थोड़ी सी हम उपेक्षा कर देते हैं।
0: आप सही कह रहे हैं, हम पर्यावरण से मतलब सिर्फ पेड़ पौधों से ले लेते हैं। पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधों से तय नहीं होगा, आपकी जल संरचनाएं, जलीय जीव भी और जीव जंतु जो जंगल में रह रहे हैं वो सभी ही मिलके पर्यावरण को डिसाइड करते हैं। हमारी फूड चेन और फूड वेब में सभी हिस्सा है, केवल हम पेड़ पौधों को नहीं ले सकते, लेकिन हमारे पास फॉरेस्ट अच्छा होना जरूरी है। हमारे पास जितना ग्रीन कवर अच्छा होगा ये सब चीजें अपने आप रिचार्ज करेंगी। तो हमारा सरकार का और वन विभाग का भी कंसंट्रेशन ज्यादा यही रहता है कि जितना ज्यादा प्लांटेशन होगा, जितना ज्यादा जंगल खड़ा हो जाएगा, तो अपने आप से वाटर बॉडीज रिचार्ज कर जाएंगी, हमारा रेन का सिस्टम ठीक हो जाएगा, और जितना रेनफॉल बेटर होगा उतना हम सर्वाइव कर पाएंगे।
1: वन किस तरह से वर्षा जल को आकर्षित करते हैं?
0: देखिए, जितना ज्यादा फॉरेस्ट का परसेंटेज ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, और जितना ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है उतना ही रेनफॉल अच्छा होता है। रेनफॉल के लिए, बादलों को आकर्षित करने के लिए भी वो ह्यूमिडिटी काम करती है। तो जहां फॉरेस्ट अच्छा है वहां अपन देखते हैं कि रेन का परसेंटेज भी ज्यादा है। आप हिमाचल उत्तराखंड उधर देख लीजिए, उधर फॉरेस्ट ज्यादा है तो उधर बारिश भी ज्यादा होती है। अपने राजस्थान में भी माउंट और सिरोही की तरफ देख ले तो उधर ज्यादा बारिश ठीक हो रही है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़,

0: इधर बारिश का परसेंटेज ठीक रहता है, लेकिन जैसलमेर बाड़मेर की तरफ जाए तो क्योंकि वहां पर जंगल नहीं है तो रेनफॉल भी कम हो जा रहा है।
1: शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास में जमीन नहीं होती, प्लॉट एक तरह से जो होते हैं उसमें पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह बहुत कम रखी जाती है। किस तरह से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अपनी भूमिका निभा सकते हैं?
0: देखिए, शहरी लोगों के लिए कि आपके पास पार्क या छोटा सा गार्डन डेवलप करने के लिए अगर जगह नहीं है तो आजकल रूफटॉप गार्डन का बहुत अच्छा चल पड़ा है, चलन है, तो हम लोग रूफटॉप गार्डन तो सभी डेवलप कर सकते हैं। उसमें आप सब्जियां भी लगा सकते हैं, आप जैविक खेती करके और जैविक सब्जियां भी खा सकते हो, साथ में आप प्लांट्स भी लगा सकते हो। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे जगहों पर लगा के भी आप डेवलप कर सकते हैं और वो छोटी सी जगह में आप अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। ये कह दो कि ग्रीन शहर का एक कंसेप्ट आया हुआ है, ग्रीन हाउस का वो आ गया है कि आप होम जो है उसको इको ग्रीन करके चलें। और ये अब तो ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है धीरे धीरे क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, तो आपको घरों में पेड़ पौधे तो लगाने पड़ेंगे।
1: एक तो हमें नए पेड़ लगाने हैं और जो पेड़ लगे हुए हैं उन्हें कटने से भी रोकना है।
0: बिल्कुल, पेड़ लगाने के बड़ा करना, देखो लगाना तो आसान है, बहुत सारे लोग लगा भी देते हैं कि हमने इतने करोड़ का प्लांटेशन कर दिया, उस विभाग ने इतना कर दिया। पेड़ लगाना भर काफी नहीं है, उसको बड़ा भी करना है। एटलीस्ट उसको 2 से 3 साल तक एक बच्चे की तरह बड़ा करना पड़ता है, उसके बाद वो सर्वाइव करना शुरू करता है। तो तब तक जब तक कि वो उसकी रूट अच्छे से मजबूत ना हो जाए और वो अपने आप से पानी ना खींचना शुरू कर दे, तब तक आपको अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी।
1: वनों के आसपास कई लोग रहते हैं और जो अवैध कटाई होते हुए देखते हैं, किस तरह से वे वन विभाग को सहयोग कर सकते हैं?
0: हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, लगातार उस पे हम लोग निगरानी रखते हैं। आप लोग कभी भी शिकायत कीजिए, जब भी ऐसी कोई घटना होती है कि वन कट रहे हैं या इस तरह का अवैध कोई काम हो रहा है तो सूचना आप वन विभाग को दीजिए, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे।
1: कई बार ये शिकायत वन्य जीव के शिकार से भी हो सकती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: दोनों तरह की शिकायत यदि कोई व्यक्ति करता है, कोई परेशानी का सामना उसे करना
0: पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी आम आदमी शिकायत कर सकता है।
1: मैम, वनों की दशा में सुधार करने के लिए वन विभाग किस तरह से जन समुदाय की सहायता प्राप्त करता है?
0: देखिए, हमें तो टारगेट मिलते हैं वन विभाग को तो हर साल, तो हमें तो जंगल में प्लांटेशन करना ही करना है, लेकिन जन समुदाय भी अगर चाहता है कि कोई लैंड लेके वो वहां प्लांटेशन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। उस जगह पे जहाँ चारागाह भूमि है या वन में भी जो फॉरेस्ट लैंड खाली पड़ा है, बैरन लैंड है, आप वहां प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा शहर में जहां पर भी रोड साइड प्लांटेशन कर सकते हैं, रेलवे लाइन के उसमें कर सकते हैं, हम जो भी जगह प्लांटेशन की हमें दिखती है सरकारी जमीन पे, आपको आसानी से प्लांटेशन के लिए मौका मिलेगा, कोई नहीं रोकेगा आप अगर प्लांटेशन करना चाहते हैं तो।
1: किस किस तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं और ये कहाँ से प्राप्त करने होंगे?
0: देखो, वन विभाग चित्तौड़गढ़ के पास हमारी 20 नर्सरियां हैं और 20 नर्सरी में लगभग हमारे पास काफी स्पीसीज हैं जो आसानी से सर्वाइव करती हैं। हार्डी प्लांट्स लीजिए ताकि बारिश कम हो, पानी ना भी दे पाओ, कम दे पाओ, तब भी वो चलेंगी।
1: कुछ के नाम आप बता सकते हैं?
0: जी, जैसे यहाँ पर चुरेल आसानी से लग जाता है, कीकर आसानी से लग जाती है, करंज आसानी से लग जाता है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं। गुलमोहर है, अमलताश है, पलाश है, अपना कचनार है, ये प्लांट्स आसानी से सर्वाइव करते हैं और इनको हम रोड साइड भी लगाएंगे तब भी चलेंगे।
1: ये पौधे किस तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कोई आज शुल्क भी देना होगा?
0: आज से ही हमारा पर्यावरण दिवस के अवसर से ही प्लांट पौधा वितरण शुरू हो गया है। वन विभाग आज से पौधारोपण करना शुरू कर रहा है। हमारे पास लगभग 13 से 15 लाख प्लांट्स हैं सब नर्सरियों में और हर तरह का प्लांट है, आप आके लीजिए। हाइट वाइज हमारी रेट जो डिसाइडेड है और हर नर्सरी में QR कोड के साथ पूरे पौधों की स्पीसीज और रेट डिस्प्ले की हुई है। आप नर्सरी पे आइए, QR कोड स्कैन कीजिए, आपकी पसंद का पौधा और उसमें रेट लिखी हुई है, आप लीजिए।
1: वन विभाग की नर्सरियां कहाँ कहाँ मौजूद है?
0: हमारे पास 20 नर्सरी है, एक तो चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर है, हथनी ओदी है, सेमलपुरा है, विजयपुर है, कपासन रेंज में है, गंगरार है, बेगू में है, इधर हमारा भदेसर में है, इस तरह से पूरा चित्तौड़गढ़ डिवीजन जहाँ तक है हमारी 8 रेंज में 20 नर्सरी है।
1: पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, और आप बाजार से प्राइवेट से कम शुल्क में यहाँ से ले सकेंगे।
1: अच्छा, कई बार समुदाय

0: तैयार हो जाता है, अपने सामुदायिक भवनों के आसपास प्लांटेशन वो करता है, कई बार विद्यार्थी मिलकर स्कूलों में करते हैं, उनके लिए क्या निशुल्क पौधों का प्रावधान रहता है?
1: जी, हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए प्रावधान ये है कि जो भी रेट हम मार्केट में देते हैं उससे हाफ प्राइस में हमको प्लांट सरकारी डिपार्टमेंट्स में देने होते हैं, तो आप वहां से आधी रेट में ले सकते हैं। लगभग 6 रुपए का पौधा है, 3 रुपए में मिल जाएगा आपको।
0: बहुत कम मूल्य पर पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: भावना जी, कोई सलाह देनी हो हमारे श्रोताओं को आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, ताकि भविष्य हमारा उज्जवल हो सके, हम पर्यावरण को बचा सकें?
1: जी, मैं विश्व पर्यावरण दिवस पे यही कहना चाहूंगी कि पंच तत्वों से बना शरीर है, और ये जो पंच तत्व है ये प्रकृति से ही मिलकर बने हैं। प्रकृति को बचाना है तो हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। केवल वन विभाग सबका जीवन बचा लेगा ऐसा नहीं हो पाएगा, ये सबकी ही सामूहिक प्रयासों से होगा। और हमें अपने पुराने टाइम में पुरानी तरीके से, जैसे जल संरक्षण वो कम पढ़े लिखे लोग अच्छा बेहतर कर पाते थे, हमें उस तरफ बढ़ना पड़ेगा।
0: पर्यावरण बचेगा तो हम भी बच पाएंगे।
1: बिल्कुल, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, अदरवाइज नहीं।
0: भावना जी, कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथियों की ओर से आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप मीरा चैनल से प्रसारित भेंटवार्ता सुन रहे थे, विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंटवार्ता। विषय था पर्यावरण संरक्षण, हम सबकी जिम्मेदारी। भावना शर्मा से बातचीत कर रहे थे सीताराम महावर। FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.9 MHz पर आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। भाग संख्या है 209। श्रीकांत पारंगाव कर और रविंद्र साठे की आवाजें हैं, और संगीत निर्देशन दिया है सतीश भाटिया ने।

भरत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

अभी आप मीरा चैनल से प्रसारित सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, भाग संख्या थी 209 और गायक स्वर थे श्रीकांत पारगांवकर के, रविंद्र साठे के, संगीत निर्देशन दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है, FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओ एक नज़र डालते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों पर। शाम 7:10 पर हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगी केंद्रीय सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। मीरा चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से रहेंगे। शाम 7:45 पर फिल्म संगीत, लोक संगीत आप सुनेंगे 8:00। 8:15 का समय रहेगा सुगम संगीत का। तो श्रोताओं ये थी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.9 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। तत्पश्चात जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40 का। राजस्थान में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे 6:45 पर।

0: जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रही। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25% पर यथावत रखा है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत बाहरी झटकों का न्यूनतम प्रभाव के साथ सामना करने की स्थिति में है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई

0: हैं। मौद्रिक नीति समिति आगे के फैसलों में आंकड़ों, आपूर्ति दबावों और आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखेगी। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों और अन्य पात्र विदेशी निवेशकों के लिए इक्विटी बाजारों में निवेश के अवसरों को भी बढ़ाया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और इस तरह की कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा परिसर में निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा के समक्ष उन्होंने नामांकन पेश किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ने श्री डांगी की उम्मीदवारी को सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव के प्रति विश्वास का प्रतीक बताया है। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थान आर्द्र भूमि पक्षियों की विविधता से समृद्ध है, साथ ही कई तरह के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आशियाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के साथ ही हरित भविष्य के लिए सहायक है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को इकोलॉजिकल संरक्षण की दिशा में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों आवश्यक हैं।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूँ, तीनों महत्वपूर्ण होती है। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने और प्रकृति का संरक्षण करने की अपील की है। आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री शर्मा ने सभी नागरिकों से पानी बिजली की बचत करने और राज्य को हरित तथा स्वच्छ बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस साल राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने के संदेश को लेकर कार्यक्रम रखे गए। अलवर में सशस्त्र सीमा बल की ओर से पौधरोपण और वितरण किया गया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाईमाधोपुर सहित अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों और आम लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। भरतपुर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। झुंझुनू में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं रखी गईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 3 दिन की देरी के बाद कल केरलम से मॉनसून का प्रवेश हुआ। इस बीच राज्य में भी प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल शाम से ही कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार

0: जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून के राजस्थान पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने 7 जून तक कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज राज्य के 14 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। मौसम में आए बदलाव से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, बीते 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में गरज और चमक के साथ तेज बरसात हुई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 7.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और राजधानी जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज अंधड़ से कुछ जगह हादसों की भी खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज राजस्थान और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीमों ने जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और साइबर अपराध से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पकड़े गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। ईडी इन ठगों के वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से आज सोमनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत लगभग 1000 बुजुर्गों को रेल के जरिए सोमनाथ यात्रा पर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। मीडिया से बातचीत में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। पूरी सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर जिले के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम लगभग पूरा हो गया है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प कर यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि स्टेशन के हाईटेक होने से पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडल ने इन विज्ञापनों को फर्जी बताते हुए कहा है कि इनके जरिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी के प्रयास किए जा सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा है कि भारतीय रेलवे सभी भर्तियां निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करता है, निजी माध्यमों से चयन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। प्रदेश में इबोला वायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। युगांडा से राजस्थान आई एक विदेशी महिला में इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण पाए जाने के बाद उसे जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं को विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल महिला में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। महिला का सैंपल जांच के लिए पुणे की प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देशभर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने

0: का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई जागरूक

0: अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज से ही हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। वन विभाग की ओर से आज लोगों को पौधे वितरित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी आज संपन्न हुआ। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए इस अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य किए गए। अभियान के तहत 577 जल संरचनाओं की सफाई की गई, वहीं 37 की मरम्मत और पुनर्जीवन के काम शुरू किए गए। 237 ग्राम सभाओं सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। कोटपुतली नगर परिषद इन दिनों पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेले लगाया गया है। 30 जून तक चलने वाले इस मेले में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी संचालकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही छोटे व्यवसाय करने वाले वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में पुलिस की ओर से अवैध मोडिफाइड वाहनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि इस दौरान वाहनों की बॉडी में परिवर्तन कर प्रेशन हॉर्न और अवैध रूप से लाल नीली बत्तियां लगाने तथा नंबर प्लेट में बदलाव करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिले में पड़ रही तेज गर्मी के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने को कहा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय महिला समाधान समिति, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा केंद्र की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। साथ ही जिला कलेक्टर ने नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बनाए गए जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की भी बैठक ली। पावटा में नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 3,29,00,000 रुपए की लागत आएगी। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सर्वे और मकान गणना का काम लगातार जारी है। प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण और आवश्यक जानकारी का संकलन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से इस काम में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। बीते दिनों राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई गई। साथ ही संध्या चौपाल लगाकर आम जन को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन दिनों जिले के मंदिरों, मठों और निजी संग्रहों में मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मिशन के जिला नोडल अधिकारी ने बीते दिनों मिशन के लिए बनाई गई क्रियान्वयन समिति के साथ बैठक की। उन्होंने समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों में जाकर पांडुलिपियों के सर्वेक्षण कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करने का आह्वान किया। उन्होंने इस काम को प्राथमिकता देते हुए डोर टू डोर सर्वे करने को कहा। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से बहरोड में एमएसएमई प्रोत्साहन जागरूकता कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को राज्य और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। इससे पहले नीमराणा, घिलोट और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को भी ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। इसके साथ ही कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। आरबीआई

0: रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किन्नो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश में पौधा रोपण वितरण और जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। हरियाली बधावन और आबो हवा ने बचावन रो संदेश दियो चियो। प्रदेश में चौमासाओं पहली री हलचल शुरू हुई। कई जिला में आंधी बारिश रो दौर जारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर नागौर और किशनगढ़ में छापा मारिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किन्नो है। मौद्रिक नीति समिति री समीक्षा बैठक में इन्हें 5.25% रा लेवल में थई राखण रो फैसलो करी चियो। मीटिंग में स्थायी जमा सुविधा री रेट 5% और सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक रेट 5.5% रा लेवल में थई राखण रो फैसलो करी चियो। चालू माली साल में लगातार दूजी दफा ब्याज री खास दरा में कोई बदलाव नहीं करी चियो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आ जानकारी दीनी। वे कह्यो के बैंक चालू माली साल सारो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बढ़ोतरी री रेट पहली री 6.9% घटार 6.6% करण रो फैसलो किन्नो। आरबीआई अनिवासी भारतीयां भारतरा प्रवासी नागरिकां और दूजा पात्र विदेशी निवेशकां सारो इक्विटी बाजार में निवेश रा मौका ही बधाया है। सरकारी दूजा देशां रा संस्थागत निवेशकां ने सरकारी शेयरां माथे भेवण वाला पूंजीगत फायदा माथे टैक्स में छूट दीनी है। देश में पॉलीमर आधारित नोट चलावण रा प्रस्ताव माथे विचार करियो जा रियो है। भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा बतायो कि देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं बैंकां री शाखावां और एटीएम माई नोटां री कमी री शिकायतां मिली ही। श्री मल्होत्रा बतायो कि बैंक कने जरूरी तादाद माई नकदी मौजूद है और इन री कमी तुरंत पूरी कर दी जावेला। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा तहत राज्यों 3 सीटा माथे वेवण वाला चुनाव बाबत कांग्रेस रा उम्मीदवार नीरज डांगी आज पर्चो दाखिल किन्नो। वे विधानसभा भवन में चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा सामी नाम पानो भरियो। ये बगत राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा में विपक्ष रा नेता टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में कांग्रेस रा मुख्य सचेतक रफीक खान समेत कई आला नेता मौजूद हा। कांग्रेस नीरज डांगी री उम्मीदवारी ने पार्टी रा सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव रा प्रति भरोसा री निशानी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बलिया रा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल रे देश री 100वीं रामसर ठौर वेवण रा ऐलान माथे खुशी जताई है। माना संदेश में श्री मोदी कह्यो के ओ जैव विविधता ने बचावण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखण सागे हरित भविष्य सारू मददगार है। सुरहा ताल में भांत भांत रा प्रवासी और वठेरा परिंदा रो रहवास है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ही इन उपलब्धि ने पारिस्थितिकी बचावण ओड़ी खास बतायो है। वे कह्यो के पारिस्थितिकी संतुलन सारू वेटलैंड ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों जरूरी है।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूँ, तीनों महत्वपूर्ण होती है। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनताओं आबो हवा रे मुजब जीवन रो तरीको अपनावण और धरती ने बचावण री अरज कीनी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके जयपुर में राखी जाए कार्यक्रम में श्री शर्मा जनताओं पानी बिजली री बचत

0: करण सागे राज्य ने हरित और साफ सुथरो बनावण मा योगदान देवण री अपील कीनी। मुख्यमंत्री कहो के एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत इस साल प्रदेश माए 10 करोड़ पौधा रोपणु तय करी चियो है। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखर राज्य माए हरियाली बढ़ावण और कुदरत ने बचावण रो संदेश देता थका कार्यक्रम राखी चिया। अलवर माए सशस्त्र सीमा बल री ओरु पौधा रोपी चिया और जनता ने पौधा बांटी चिया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाई माधोपुर समेत कई ठोड़ा विद्यार्थी और जनता पौधा रोपिया और पर्यावरण ने बचावण री सोगन लीनी। भरतपुर माए पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली जी। झुंझुनू माए पर्यावरण बचावण जुड़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम और होड़ा राखी जी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। देश में चौमासारी बिरखा स्वरूप एवं हालात अनुकूल है। केरलम में चौमासारी बिरखा 3 दिन मोड़ी स्वरूप ही राज्य में चौमासाओं पहले रे हलचल तेज वे की है। काल सिंजा हुई कई जिला में आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। मौसम विभाग रे मुजब आवता महीना रा पहला सप्ताह में राज्य में चौमासारी बिरखा स्वरूप एवं आसार है। ये बीच 7 जून ताई प्रदेश रा कई हल्का माए आंधी बारिश री संभावना जताई ची है। आज राज्य रा 14 जिला माए ऑरेंज और 8 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। मौसम माए आया बदलाव तेज गर्मियों थोड़ी साता मिली है। हालांकि तेज अंधड़ रे कारण कठे कठे हादसा री खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा माए अंधड़ 2 जना री मौत वे की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी री ओर आज राजस्थान और पंजाब माए साइबर अपराधा माए शामिल फेवन री शंका वाला रे खिलाफ 7 ठोड़ा छापा मारी जिया। ईडी री टीमा जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ माए एक सागे करी जी कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद माए मोबाइल फोन माए लगन वाली सिम और साइबर अपराध माए काम आवन री शंका वाला इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान पकड़िया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत करीब 1000 बुजुर्गों ने रेल रे जरिए सोमनाथ री यात्रा कराई जा रही है। इन सारू जयपुर कने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रेलगाड़ी ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत कहो के 6 दिन री ई यात्रा माए यात्रुआ सारू सगड़ा सुविधा मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेड़ द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। पूरी सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत बीकानेर कने लालगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावण रो करीब 85% काम पूरो वेक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के लगभग 20 करोड़ रुपया रा खर्चो वठे नुआ सुविधा विकसित करी चिया है। श्री सुदर्शन बतायो के इन स्टेशन रे हाईटेक मेवणो सैर सपाटा वठेरा हाथ री कारीगरी रा काम और कारोबारी हलचल ने बढ़ावो मिलन सागे नौकरी धंधा रा मौका ही बधेला।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

0: पश्चिम मध्य रेलवे रो कोटा मंडल रेलवे माय भर्ती रा सोशल मीडिया माथा चाल रिया फर्जी विज्ञापनाओं सावचेत रहवन री राय दीनी है। मंडल रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन कहो कर रेलवे माय सगली भर्तियां ते नियमा रा तेत साफ कोई सागा करी जावे है और गैर सरकारी जरिया चयन री कोई प्रक्रिया नी वे है। प्रदेश में इबोला वायरस री शंका वाला एक मरीज रिठा पड़िया पछे स्वास्थ्य विभाग सावचेत वेक्यो है। अफ्रीकी देश युगांडाऊ राजस्थान आई एक विदेशी महिला माए ई बीमारियों मिलता जुलता लक्षण रिठा पड़िया पछे वाना जयपुर रा RUHS अस्पताल रा विशेष आइसोलेशन वार्ड माए भर्ती कराई ची है। RUHS अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता बतायो कि फिलहाल ई महिला में इबोला संक्रमण री पुष्टि नी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज टोंक में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रा AEN और कंप्यूटर ऑपरेटर ने 20,000 रुपये री घूस लेता थका पकड़ लीना। ACB रा एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा बतायो कि पकड़ी गया लोगों माथे शिकायत करण वाला रा घर रो बिजली रो मीटर पाछो देवण और विजिलेंस जांच रपट नी भरण री एवज माय आ रकम मांगण रो आरोप है। ACB कोटा विकास प्राधिकरण माय संविदा रा आधार उ लाग्योड़ा एक कर्मचारी ने 15,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वा माथे शिकायत करण वाला रा बाप दादा रा घर माय भागीदार लोगों ने लिस्ट माय नाम मांडण सारू घूस मांगण रो आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी भेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। RBI रेपो रेट माय कोई बदलाव नी कीनो 5.25% रखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माय पौधारोपण वितरण जागरूकता कार्यक्रम रखी चिया। प्रदेश में चौमासाओं पहली री हलचल शुरू हुई। कई जिला में आंधी बारिश रो दौर जारी। प्रवर्तन निदेशालय साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर नागौर और किशनगढ़ में छापा मारिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं वसुधा वाणी, पर्यावरण एवं पर्यावरण परिवर्तन के घटक।

0: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ प्रस्तुत करता है पर्यावरण से जुड़ा कार्यक्रम वसुधा वाणी।
1: अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधेव कुटुंबकम।
0: ये तेरा है ये मेरा है ऐसा वे लोग सोचते हैं जिनका मन छोटा होता है। जिनका मन बड़ा होता है उनके लिए तो सारा विश्व ही परिवार है। आज की वसुधा वाणी में जानते हैं पर्यावरण क्या है और इसके घटक कौन कौन से हैं।
2: पेड़ पौधे जीव जंतु वायु जल पहाड़ एवं अन्य प्राकृतिक पदार्थ जिन्हें हम देख अथवा अनुभव कर सकते हैं वे सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण अर्थात हमारे चारों ओर का परिवेश। पर्यावरण शब्द उन सभी चीज़ों को संदर्भित करता है जो हमारे आसपास हैं जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों चीज़ें शामिल हैं। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है सामाजिक पर्यावरण एवं प्राकृतिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक मानव समाज है। सामाजिक पर्यावरण सामाजिक संबंधों की अंतर क्रिया से प्रकट होता है। पर्यावरण का दूसरा प्रकार है प्राकृतिक पर्यावरण। हमारे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु वायु जल मृदा आदि मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। भौतिक भूगोल की दृष्टि से पर्यावरण के मुख्य चार घटक हैं वायुमंडल जीवमंडल स्थलमंडल और जलमंडल। वायुमंडल पृथ्वी पर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। वायुमंडल में सबसे निचली परत क्षोभ

0: मंडल हैं, जो लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित रहती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में होती है। समताप मंडल लगभग 50 किलोमीटर घना है। इसमें ओजोन परत भी शामिल है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। वायु के संगठन में 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस तथा शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प आदि गैसें होती है। विभिन्न क्रियाकलापों जैसे जीवाश्मीय ईंधन का दहन, औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आदि गैसों के कारण वायु के संगठन में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ऐसी हवा में सांस लेना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है तथा इस प्रदूषण से ग्रीन हाउस प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण का दूसरा घटक है जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी के 2/3 हिस्से को कवर करता है। जलमंडल का एक प्रमुख हिस्सा सागर का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, जबकि केवल एक छोटे से हिस्से में ताजा एवं स्वच्छ पीने योग्य जल होता है। नदियों, झीलों एवं ग्लेशियर में ताजा पानी हमेशा वाष्पीकरण और वर्षा की प्रक्रिया से नवीकृत हो जाता है। कुछ जल की मात्रा भूजल के रूप में संग्रहित रहती है। भूमिगत जल स्तर कम होने एवं जल प्रदूषण होने से पीने योग्य जल की मात्रा में कमी आई है। पर्यावरण का तीसरा घटक है स्थलमंडल। पृथ्वी की सबसे ठोस एवं सतही परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ठंडी परत है, जिस पर सभी जीवित प्राणी रहते हैं। पहाड़, नदियाँ, मैदान आदि सभी इसी मंडल का हिस्सा है। रासायनिक रूप से इस परत में ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आदि तत्व पाए जाते हैं। स्थल मंडल पर स्थित चट्टानें जब टूटती हैं तो मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में जीवित जीवों के सड़े गले अंश अर्थात ह्यूमस मिल जाने से इसकी उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है, लेकिन अवांछित तत्व जैसे प्लास्टिक, कीटनाशक पदार्थ, रासायनिक खाद आदि अवांछित पदार्थ मिलने से धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होने लगती है। इसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण का चौथा घटक है जैव मंडल। जैव मंडल साधारण भाषा में अर्थ उस स्थान से होता है जहाँ जीव निवास करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के सभी जीवों का समावेश होता है। पृथ्वी की ऐसा ग्रह है जहाँ जैव मंडल का अस्तित्व पाया जाता है। जैव मंडल के प्रमुख घटक हैं अजैविक घटक और जैविक घटक, और साथ ही ऊर्जा घटक भी इसका एक हिस्सा माना जाता है। अजैविक घटक के अंतर्गत वातावरण में पाए जाने वाले खनिज, विभिन्न प्रकार की गैसें, पहाड़, जल, पोषक तत्व एवं अन्य तत्व शामिल हैं जो सजीवों को पोषण के लिए आवश्यक हैं। जैविक घटक के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि सम्मिलित किए गए हैं, जो पर्यावरण में रहकर अपना पालन पोषण करते हैं एवं प्रजनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ऊर्जा घटक में सूर्य को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है, जिससे सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा एवं पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश मिलता है। पर्यावरण के सभी घटक मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, अतः हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए।
1: आज की कड़ी में हमने जाना पर्यावरण क्या है और इसके घटक कौन कौन से हैं। जानकारी दे रही थी डॉक्टर ज्योति सुराणा। आज की वसुधा वाणी में बस इतना ही।
2: अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधेव कुटुंबकम।
1: ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा वे लोग सोचते हैं जिनका मन छोटा होता है। जिनका मन बड़ा होता है उनके लिए तो सारा विश्व ही परिवार है।
3: अभी आप सुन रहे थे मीरा चैनल से प्रसारित वसुधा वाणी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी

0: जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम, भाग संख्या है 5, विषय है महिला सशक्तिकरण। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से बातचीत।

0: rights. That was the fourth component of the scheme. We were pushing them towards greening and sustainable manufacturing, which was another component of the scheme. So we have now added AI also to that, so that MSMEs are not left behind in this new technology.
1: Bharat Kheda ji, thank you so much for being with us. We have unfortunately run out of time, but the discussion can be endless. That is the scope of the micro, small and medium enterprises. Thank you so much for being with us.
0: Thank you.
2: In the special series, 12 Years of the Modi Government, you are listening to an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer was Arjun J. Chaudhary. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे अर्जुन जी चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: FM एंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
5: GST काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ आपके साथ तरजनी, और आज है शुक्रवार, तो आज हम लेकर आए हैं एक ही कलाकार।

दोस्तों एस पी बाला सुब्रमण्यम भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायकों में से एक हैं। इनका पूरा नाम श्रीपति पंडिता राधुल्य बाल सुब्रमण्यम है। इनका जन्म 4 जून 1946 को हुआ था। ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी सहित अनेक भाषाओं में अपने इन्होंने गाने गाए हैं और इन गानों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। इन्होंने अपने लंबे संगीत जीवन में हजारों गीत गाए और अपनी मधुर आवाज़ से करोड़ों श्रोताओं का दिल जीता। इन्हें कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले और अन्य प्रतिष्ठित सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया। इनकी गायकी में भावनाओं की गहराई और सुरों की मिठास विशेष रूप से दिखाई देती है।

श्रीतम भारतीय संगीत जगत के सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी गायकों में से ये एक हैं। इनका जन्म हम आपको बता चुके हैं, 4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश में हुआ। बचपन से ही इन्हें संगीत की गहरी रुचि रही इनकी, और अपनी मेहनत और प्रतिभा और मधुर आवाज़ के बल पर इन्होंने भारतीय फिल्म संगीत में एक विशिष्ट स्थान बनाया। इन्होंने लगभग 5 दशकों तक संगीत जगत में सक्रिय रहकर कई गीत गाए और कई भारतीय भाषाओं में गाए।

एफएम मीरा चैनल से प्रसारित आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत के तहत एक ही कलाकार और मैं हूं आपके साथ रजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके बारे में और भी। दोस्तों इनकी उत्कृष्ट गायकी के लिए इन्हें कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण से ऐसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। ये केवल गायक ही नहीं बल्कि संगीतकार, अभिनेता और टीवी प्रस्तोता भी रहे। इन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतकारों, गायकों के साथ काम किया और कई सुपरहिट फिल्मों में आवाज़ भी दी। इनके द्वारा गाए गीत आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इनकी मधुर आवाज़ और संगीत के प्रति समर्पण ने इन्हें भारतीय संगीत इतिहास के महानतम गायकों में स्थान दिलाया। इनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और सफलता का प्रेरणादायक उदाहरण है।

श्रोता, आज का कार्यक्रम यहीं तक दीजिए अनुमति। नमस्कार। FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में लेकर हाजिर होते हैं लोक संगीत।

लोक संगीत में पहला लोक भजन अभी आप सुन रहे थे सतीश देहरा और सीमा मिश्रा के युगल स्वर थे। आइए आप सुनते हैं हसन खान मंगण्यार को।

हसन खान व साथियों की गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत।

एफएम मीरा चैनल से प्रसारित आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। अभी आप सुन रहे थे सोहम नायक को। आइए अब सुनते हैं स्टेबिन बैन नीति मोहन हर्ष करगेती को।

एफएमीरा चैनल से प्रसारित आप सुगम संगीत सुन रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल, तुलसी कुमार और रश्मि की आवाज़ों में ये गीत। आइए सुनते हैं अगला ये गीत, जिसे गाया है मिलन हरीश ने।

विशाल मिश्रा के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या, तत्पश्चात 9 बजे होंगे न्यूज़ एट 9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट

0: क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 144454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और

0: युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून

0: अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under-18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai, balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहां कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत में डाला है खेमचंद प्रकाश ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जिद्दी। इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने। इस कार्यक्रम के आखिर में

आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajno ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

के बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

अनुष्का जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीक हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड, आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायू जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान, एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सवेरे 8:52 पर पुनः प्रसारण सभा में भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।